बच के रहना नटखट प्रेम कुमारी। इन गलियों में बच के रहना नटखट प्रेम कुमारी। इस बस्ती में रहते हैं सबके सब प्रेम पुजारी। चटक मटक के मत चलियो, कोई नमक लगा कर चख लेगा। चटकीली चटक जवानी को झटके अखियन में रख लेगा।

जुल्म किए खंजर चलवाए कितने हिटलर आए, खंजर चलवाए कितने हिटलर आए, पर इश्क में पागल दीवानों को वो भी रोक न पाए। लहू दिलों का जब चाहत के रंगों में ढलता है, तब तक इस दुनिया में सुंदर ताजमहल बनता है।

इन गलियों में बच के रहना नटखट प्रेम कुमारी, इन गलियों में बच के रहना नटखट प्रेम कुमारी, इस बस्ती में रहते हैं सबके सब प्रेम पुजारी। चटक मटक के मत चलियो, कोई नमक लगा कर चख लेगा, चटकीली चटक जवानी को झटके अखियन में रख लेगा।

किए खंजर चलवाए कितने हिटलर आए, फिल्म किए खंजर चलवाए कितने हिटलर आए, पर इश्क में पागल दीवानों को वो भी रोक न पाए। लहू दिलों का जब चाहत के रंगों में ढलता है, तब तक इस दुनिया में सुंदर ताजमहल बनता है।